0: 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେକରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ଈଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣମୟ।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

0: गुलगुली गुलगुली गुलगुली गुलगुली मले खाई मले ही बिल्ले घुमाई पुसी घुमाई पुसी
1: घुमाई पुसी और माई पुसी और माई पुसी।
2: वसंत कुमार महापात्र जगत सिंहपुर कौछ मोर कहि बिलै हाथले माछ तारफ माछ बिरारी खाद्य जदि खाद्य खाद्य को एक परिचित हो ताले से खाद्य खाद्य भितर जो संपर्क अछि सेटा कार्यकार बिलै पाखरे माछ रो से बिरारी निश्चय खाइ तो जेते खाइ तो जेते पोसा बिरारी तो माछ से खाइबो खाइबो से जरो कथा अछि चोर हाथ चाबी काठी आमे जानुछु लोक चोर ए लोक डकायत तो आमे जे तको चाबी काठी दबा अर्थात सेमिते जिनिस रक्षण बेक्षण कहियो काम तो दबा से निश्चय तो अपव्यय करिवो एवं से निश्चय चोरी करिवो जारटा प्रकृति कहि छाड़बनि जे कोनोसी मनुष्य हो जे कोनोसी पशुपक्षी हो पशुपक्षी जदि खाद्य पे सेमाने लोभ करती मनुष्य खाद्य न थाले मध्य विभिन्न आवश्यकता पे सेमाने लोभ लोभदार करे तेणु जहाँ जहाँ प्रति लोभ अच्छी जोटा प्रति आसक्ति अच्छी से जिनस दायित्व दबाटा एक प्रकार बकामी समस्त जरी करते ना सेमता लोक दायित्व दरकार बिराड़ी माछ खाए सब अन्य प्राणी माछ खाए गुरु माछ खाए मोदी गोटे गाई पाखे माछ रखी सुबह बिराड़ी पाखे माछ रखे जो जिनस प्रति जार लोभ अच्छी आसक्ति अच्छी से जिनस को रक्षणाबेक्षण से लोक हाथ दवा उचित नुह खाद्य खादक भितर संपर्क हो पारे ना के चोर जिनस भितर चोर के जिनस आम जिनस को भल कि जगवानी तेणु आम जो कौन जिन दायित्व दवा आम से लोक को परीक्षा करा दरकार से लोक प्रकृति आपत्ति आसक्ति अच्छी ना नचे आम जो चोर हाथ चाबी काटे न जानी पारि से लोक चोरी कर नहीं आम जो न जानी पारि हाथ में किसी रक्षण बेक्षण दवा आम बाड़ी घर रक्षण बेक्षण हो आम घर द्वार हूँ ये हूँ सी हम कौन ना सी निश्चय चोरी कर एक मैडम यही गोटे यही आम घर पाखे लोक से स्वामी स्त्री दिजन माने रिटायर्ड टीचर एटा सत्य कथा से स्थानीय लोक से गाँव में रहती से लोक गोटे घर जी आशा कैर से लोकटी विश्वास कैर ये टीचर स्त्री भी टीचर ये विश्वास करती दिन चल गए से सका गले कौन जाइए पूरी मंदिर पूरी मंदिर आसल सबुजात मैडम आगे टंका पैसा सुना रूपा सब चोरी जाती कबाट चलाई तेज़े किए कला से लोक दायित्व दिया था से लोक को जगे से लोक भी कह जगित बोली ये जानते सी मोर विश्वास कितु ये लोक जानते सी मोर विश्वास जगे दिगला कि लोक तार प्रकृति चलानी से कम करदे तेणु आमको समाज में एमता लोक सतर्क रहा दरकार प्रति मुहूर्त कौटी केमतिया घटना सब घटुची और कौ लोक मैंने संपृक्त किए केमिया लोक लोक चरित्र को निहाती जानक अनुसार आम निजर जीवन को अतिवाहित नक आम निश्चय प्रति मुहूर्त विपदर पड़ा सतर्क दरकार संपूर्ण रूप क्या विश्वास करवाटा आम शास्त्र मना कर संपूर्ण रूप विश्वास करनी सतरा सह विश्वास कला मैंने बेले बेले असुविधा पड़ा पड़ता है।

0: गोलमाल है।
1: मुँ माझी अधिकारी ब्रह्मपुर रु कहुचि। आमर आज रूढ़ी होइछि बिलेइ हाथ में माछ केलाइबा। बिलेइ तो माछ प्रिय, कारण ताकु जदि आमे माछर रक्षण बेक्षण आउ तार सफा सुतरा भार देबा ताले से निश्चय लोभ करिवो आउ खाइबो ही खाइ। सेमिति माने खाद्य खादकर संबंध करी। ए रूढ़ी चाहे केवल माछ आउ बिलेइर

0: 7ଟାରେ ଏବଂ ରାତି 8ଟାରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ କେତୋଟି ଗୀତ। ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଘର ଆମ ସଂସାର ପ୍ରଚାର କରିବୁ ରାତି 8:10। ଶୁଣିଲି ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ସକାଳ 8:30 ଶୁଣିବେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍କ୍ୟୁବେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का देश ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नराइशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उपप्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटक्यो भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
3: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
3: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
5: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
4: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुंच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मुक्की में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति

0: आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रे विज्ञापन पाई जोगाजोग करंतु
1: 8280306927 एवं 9449408097
0: सहज एवं सरल उपाय रे अल्प टंका रे आपण आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रे विज्ञापन दियंतु।

0: 9780297
1: सहज एवं सरल उपाय रे अल्प टंका रे आपण आकाशवाणी जयपुर केंद्र रे विज्ञापन दियंतु।
2: आकाशवाणी जयपुर केन्द्रु आपण माने कार्यक्रम शुणुछन्ति। कार्यक्रम आम केन्द्रु प्रचारित हेउछि मीडियम वेभ्रे 2,004.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ज जोगे एफएमरे शुणिपारुछन्ति 103.6 मेगाहर्ज जोगे। आपण मोबाइल फोन्र न्यूज अन् एआईआर आप माध्यमरे मध्य आम केन्द्रर समस्त कार्यक्रम शुणिपारुछन्ति। प्रचार करुछु गीतधारा क्रमरे केतोटी हिंदी चलचित्रर गीत। प्रथमे शुणन्तु हम किसी से कम नहीं चलचित्ररो। द्वैतकण्ठरे शिल्पी मानिले उदित नारायण एवं अल्का याग्निक। गीत रचना करिछन्ति आनंद बक्सी, संगीत अनु मल्लिक।

शरीर पालन करिसंती जहां को दया रे जीवन रहिची ये जीवन टा तांकरी पाई रहिची तांकर ऋण सुझीबा कु ए

प्यार का मौसम चलचित्र शिल्पी हेले लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफी मजरू सुल्तानपुरी गीत संगीत राहुल ते बर्मन।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ଭକ୍ତି ଗୀତ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद है हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
2: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं।

0: सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति
1: जी, धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली की चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी रे संवाद रिले कोलु आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी जयपुर प्रचार करुचु प्रादेशिक लोकगीत कार्यक्रम गीति भारती। प्रथमे बुंदेलखंडी लोकगीत शुणंतु समवेत कंठरे।

ये जवानी है दीवानी ए चलचित्र रे शिल्पी हेले अरिजित सिंह अमिताभ भट्टाचार्य गीत संगीत प्रीतम

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है शैलेंद्र, धुन है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे की आवाजों में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: मिल जाएगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गणेश पेठ पार्थी पुणे से, अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया कोटवा नारायणपुर यूपी से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी कर्नाटक स्टेट से, चिन्ना तिरुपति, प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मनवीत बडेना पाटन से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलकराज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा वर्मा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलकराज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और प्रकाश अरोड़ा राजस्थान जोधपुर से, अशोक बाणिया, प्रेमलता और सुमित बाणिया आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां नाभा जिला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत सुनना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है रखवाला।

साथियों, मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुया जाधव, आकाश जाधव और पवन राजे जाधव, गांव हिप्पर सोगा जिला लातूर महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजन बी शेख, बाबा सिमर और करिश्मा शेख, लाबरिया भैरो इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार, कोलार रोड भोपाल से मनीषा मालवीय, उमंग, शीतल, लोकेंद्र और राम

अब मालवीय ग्राम पजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, शहर अनिका चौक बीड़ से जनार्दन वैद्य पाठक, भाग्यश्री नारायण आरुषी, चीऊ माऊ और बिट्टू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलापुरी, कैलाशपुरी, आरएसपुरी, बीकेपुरी और वीपी रंजू। गोटेगांव एमपी से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया। पवनपुरी बीकानेर राजस्थान से भंवर

सोनगरा प्रेमी, गीता देवी, मूलचंद, हंसराज, मुकेश, सुनीता, कृष्णा, सावित्री, राज, प्रथम राज, अंजलि, पलक, अमीशा, अनुष्का, आशीष, लक्षिता, जतिन, मनोहर लाल सोनगरा, सरोज, दायमा, अखिल, दायमा, एलेक्सा और मोहन लाल देवड़ा, बड़वासे, पुष्पेंद्र रावल, अयांश, इंदिरा, निशा, निहारिका, सोनू और मोनू रावल, नजीरगंज, नेपाली पाड़ा, जिला हावड़ा, वेस्ट बंगाल से दीपक लिंबू, रितेश लिंबू, उषा, ज्योति, किरण, दिलशा, रज्जाक अली और समस्त परिवार, भुट्टो, मंडी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से अमर वर्मा, छाबड़ा, राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शबनम बानो। आप सभी की पसंद पर सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गोविंद मुनीस का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। और सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी दोस्त। GCF स्टेट जबलपुर से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, सुदेशना राजपूत, पुष्पा, शानू और निमो। कोटडा बहादुर जिला मंदसौर MP से तूफान डांगी, टीना डांगी और छोटा लक्ष्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, दीपक मुनत, मयंक, नेहा जैन और चेतन नहरा। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम, पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। गाजियाबाद यूपी से सुषमा शर्मा, श्वेता शर्मा, अभिषेक शर्मा और एमडी शर्मा। ग्राम तंगोरी, जिला मोहाली, पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। भुट्टा बाजार रतलाम से बाबू भाई लच्छेवाला। बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद हुसैन भिश्ती, सुल्ताना असलम, जावेद, उबैद और चांदनी भिश्ती। शनिवार पेठ भीड़ शहर से पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे और समर्थ कुलथे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरव, शाइना, निवान शर्मा और मैंडी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है नगीना।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आरती श्रीवास्तव और आकांक्षा विश्वकर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडीराज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एच वी रामचंद्र राव, इसका निर्देशन किया निर्मला अग्रवाल ने। तो सुनिए नाटक कल आना

0: साशा जी।
1: हैं? अभी तो 10:30 बजे हैं। मेरा मतलब है दफ्तर खुले आधा ही घंटा हुआ है, पर आप हैं टाइपिंग में एकदम खो गई हैं।
0: क्यों ना हो नक्काल बाबू, भाई हम सब तो ठहरे काम चोर। एक ये है कुमारी आशा देवी, जिन्होंने पूरे दफ्तर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना आशा जी?
2: आप दोनों महानुभाव कुछ समय के लिए मौन धारण करेंगे
0: जी?
2: खुद कुछ करते धरते नहीं, दूसरे काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे आशा जी, आप तो बुरा मान गई हैं। लगता है आप कुछ खास किस्म का काम कर रही हैं। शायद प्रेम पत्र लिखा जा रहा है।
0: अरे लिखना क्या, तंकित किया जा रहा है। अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन कहाँ होती है।
2: ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबी लाल जी, आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए, बेकार में छिक छिक करते रहते हैं।
3: अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है, सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो? दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते?
0: नक्काल बाबू, ये हमारे चपाची साहब हैं,
1: आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते। हाँ, अब

0: बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुँच जाऊँ तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा, हैं? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए।
1: अब तुम्हें कौन रोके भाई। हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुँचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस

0: के लिए मैंने अर्जी दी थी।
1: तो आप त्यागी हैं, यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही?
0: जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं।
1: अच्छा,
0: महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे, और भारत छोड़ो आंदोलन में।
1: बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा?
2: अरे लोग बात सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे।
0: सच कहते हैं आप, वैसे मैं आप जैसों के हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सबसे दूर रहा। और क्या करूं, रिश्ते के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना
1: इसीलिए कहते हैं अकल से काम लो, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था, आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे। अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया, तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं।
0: सर, आप बुरा न माने तो एक बात को।
1: हाँ हाँ, बोलो बोलो।
0: आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं।
1: अरे श्रीमान जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
3: जी हाँ, घर में बीवी के साथ,
1: दफ्तर में साहब जी के साथ, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी,
3: आखिरी दम तक चलती रहेगी।
4: वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे।
3: हाँ बैठिए बैठिए। हाँ, क्या नाम है आपका?
0: जी सत्यमूर्ति।
1: सत्यमूर्ति जी, यहाँ आइए। एक बात बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना?
0: जी।
1: आप आजादी के लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे।
0: हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज है ना, मैं आपका एहसान मानूंगा।
1: आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा?
0: जी
1: अरे, आपको क्या आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता?
0: जी जी जी, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ, इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा।
1: अच्छा अच्छा, आपकी बात और हमारी समझ में आ गई। चौकन्ना, टेलीफोन उठाना।
3: ओ कहाँ मर गया ये चौकन्ना, पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं।
1: आशा जी जरा देखिए किसका फोन है।
4: आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ।
1: हिसाबी लाल जी।
5: सर, आप सीनियर हैं।
3: ओहो ठीक है, मैं ही उठाता।
5: नक्काल बाबू, उनकी घंटी का संगीत बंद हो गया
3: लगता है। साहब जी आ गए, आज बहुत जल्दी आ गए
5: लगता है। साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई।
0: साहब जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं।
3: श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए।
6: पैसा मत आ गई, पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की।
1: बारी और किसकी होगी, आप ही तो सबसे सीनियर हैं।
3: है?
1: पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी।
7: नकाल बाबू, साहब जी आपको तलब कर रहे हैं।
3: मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई।
8: नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है, स्टुपिड। मेरा मुंह क्या ताकते हो, जाओ इसे दोबारा करके लाओ।
9: जी सर।
0: सर, अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ?
3: नहीं, आप घर जाइए, आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा।
0: जी
3: हाँ, कल आना कल।
10: सजन कब आएगा, सजन कब आ।
3: चौकन्ना
7: जी। सर
3: सुनो, ये पंखा घर घर आ रहा, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ।
7: छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है।
3: क्या,
7: जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है, आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया। अब इसकी क्या मरम्मत होगी, इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए।
3: हिसाबी लाल जी।

0: जी
1: आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना?
0: अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है?
2: अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो यह है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, ना झाड़ ना क्वेरी।
0: तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ।
3: कर लो।
0: आशा जी आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए।
4: उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता, मैं अपना काम ढंग से करती हूँ तो मैं क्यों चापलूसी करूँ?
0: ये भी ठीक है।
5: नमस्कार सर।
0: कहिए क्या काम है?
5: मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही।
0: हाँ ठीक है ठीक है।
5: ओ तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं?
0: जी हाँ।
6: नमस्कार बाबू।
0: हाँ
6: आपको हाँ बुला रहे हैं।
0: हाँ ठीक है आता हूँ।
5: आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है।
7: नमस्कार सर।
6: नमस्कार। नकाल बाबू
7: जी,
6: मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है।
7: कहिए सर।
6: वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है
7: जी,
6: 12 को पुतूर में साले की बेटी की शादी है, और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में।
7: ओह तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए।
6: पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है।
7: हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते हैं ना, अब जाए बगैर कैसे चलेगा?
6: वही तो मेरी समस्या है, जाऊं तो कैसे जाऊं?
7: अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना, मैं 3 दिनों की छुट्टी लीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए, दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे।
6: नक्काल बाबू
7: जी,
6: इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा,
7: वो
6: इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं
7: जी।
6: ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते
7: जी। समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, मैं आपके बताए ये सारे ऊर टूर में शामिल किए देता हूँ।
6: हाँ ठीक है, सारे डेट्स जरा ठीक तरह से नोट कर।
7: ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ।
6: उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर।
0: अरे ये क्या रट रहे हो नकाल बाबू?
7: साहब जी का टूर प्रोग्राम, 11, 12, 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा।
0: अरे वाह।
5: सर वो मेरा प्रमाण पत्र।
1: भाई बुजुर्गवार आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए, हमें प्रायोरिटी देखनी है, इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है।
5: तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ।
1: कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना।
0: सत्यमूर्ति जी आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं?
1: बिल्कुल, आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए।
5: तो फिर मैं कब आऊँ?
1: कल आना।
5: कल
1: कल कल तो इतवार है।
5: ओहो
1: तो सोमवार को आइए, इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, अब जाइए।
6: नकाल बाबू
7: जी। सर
6: प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा?
7: जी हाँ सर देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर।
6: पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है, चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते।
7: पर सर लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था, मैंने सोचा सर ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर।
6: खैर उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, द होल प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड।
7: जी हाँ होल प्रोग्राम क्लोज ही होना चाहिए।
6: ये कैसी बातें करते हैं नकाल बाबू
7: जी,
6: कार्यक्रम को बंद नहीं करना है
7: जी,
6: बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के 2 मुख्य मुद्दे हैं, पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा
7: जी,
6: और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है।
1: साहब जी ये असल में सर्कुलर नहीं सर्किलर है।
6: खैर अब जो भी समझो। हाँ पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए, उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी।
7: जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा, 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 काफी मंगा लूंगा।
6: ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा?
7: सर आशा

0: इसे कह दूंगा वो टाइप कर देंगे। पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना।
1: जी हाँ साहब हो जाएगा, आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा।
0: अगर आप हुक्म करेंगे सर तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा। सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए।
1: ओके साहब। सर मैं चाहता हूं कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए।
0: अरे नकाल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम?
1: जी
0: बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है।
1: समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूं।

0: सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई।
1: कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी।
0: आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है।
1: खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ
0: और भी कुछ होगा।
1: और क्या,
0: मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ, अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना।
1: तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो।
2: भाई चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा, सिर्फ एक रुपए में एक पैकेट।
3: क्यों साहब जी, चना लेंगे?
0: नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मुंह से।
3: मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है, इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। आप खाकर तो देखिए, आप रोमांटिक हो जाएंगी।
0: अच्छा तो भाई फिर दो पैकेट दो।
3: ये लीजिए
2: चना चोर गरम भाई, चना चोर गरम, चना लीजिए चना, एक रुपए में एक पैकेट, चना लीजिए चना।
0: उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। कहते थे कि रोमांटिक हो जाएंगे, अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए।
1: किरण किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है।
0: ओहो,
1: बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण जरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज।
0: ओके।
2: ओ चने वाले दादाजी
4: जी,
2: आइए जरा।
3: और चाहिए ले लीजिए, मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे।
2: हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना।
1: दादाजी आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना।
3: अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करते हैं। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ।
0: क्या आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक?
3: नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं।
1: किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया।
3: नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सत्यमूर्ति चने वाला हूँ।
2: पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है।
4: चला भाई चला, चना।
0: अब ये चना खाने से हमने प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी, इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्वेष जन्मेगा, है ना आशा?
1: किरण मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी, सत्यमूर्ति जैसे को न्याय मिलेगा।
0: तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा।
1: मैं आशावादी हूँ।
0: हाँ तुम हो ही आशा।
1: कम से कम तुम जैसी सिनिक कवि तो नहीं हो।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा।
1: सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
2: साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पर साहब जी, एक समस्या है।
0: हाँ हाँ, कहिए।
2: काफी ठंडी हो रही है।
0: तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी
3: हिसाब बिलाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा।
2: अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पड़ा जाएगा।
3: बच्चे भी
2: बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी।
4: नक्काल बाबू,
2: क्या
4: वो एक बुरा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है?
2: जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल?
4: आज फुर्सत नहीं है, कल आना। कल?
0: हाँ, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?
2: साहब जी, ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया।
0: अरे नक्काल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ?
2: आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर। सर, एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान है, फिर उसको खास जगह पर टंगवा देते हैं।
0: वेरी गुड। साथियों, ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए।
2: उससे क्या? सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे, जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिख लेंगे।
0: हाँ, एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है।
2: उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेवल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं। ये ठीक नहीं होगा सर। नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए।
3: बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा।
0: हाँ तो ठीक है, अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा
2: जी,
0: और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है।
3: वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है।
0: इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
2: अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे।
0: भाई समस्या वो नहीं है, अरे सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए।
2: साहब जी, हमारे दफ्तर में बूढ़ा आदमी आता है, सुनते स्वतंत्रता सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर?
3: हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है, मैं उसे जानता हूँ, मैं बुला लाऊंगा।
2: बेचारा गरीब बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी।
0: हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा। हा? हा?

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली है। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना। आदरणीय सत्यमूर्ति

0: से निवेदन है कि वे आप मंच पर पधारें और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित होंगे।
1: साहब जी, सत्य मूर्ति जी अभी नहीं आए हैं।
2: ये क्या मजाक है, जाइए जल्दी बुला कर आइए उन्हें।
1: नक्काल बाबू बुलाने गए हैं।
0: चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबी लाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे।
3: उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं, यही नहीं वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए।
4: और धर्म चना, बस एक रुपए में एक पैकेट चना खाइए था, चना खाइए चना।
3: अजी महाशय, सब
4: बड़ा मजेदार चना है।
3: अजी मैं आप ही से कह रहा हूँ, अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही है। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था।
4: कहना चाहिए, अरे गर्मा गर्म चना मसालेदार चना, चना खाइए साहब।
3: अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा।
5: आपको वहाँ ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना।
2: कौन है आप, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं?
3: अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू।
2: ओह समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है।
3: हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
2: लेकिन मेरा प्रमाण पत्र
3: सब दिया जाएगा। इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी
6: सर, मेरी अर्जी आज नहीं होगा, कल आना, कल।
7: आप जी मेरा प्रमाण पत्र,
3: आप जाओ भी, कह दिया ना कल आना, कल।
2: अरे सत्यमूर्ति जी आप कहाँ खो गए, चलिए भी।
3: क्या
2: कहाँ चलूं, अरे देखते नहीं आज मुझे फुर्सत नहीं है, आपका काम नहीं होगा।
3: क्या
2: कल आना कल।
3: अरे सत्यमूर्ति जी मेरी नौकरी चली जाए।
2: हाँ भाई अब जाओ भी, कह दिया ना कल आना कल।

0: कल आना कल। अभी आप श्री एच डोंडेराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच वी रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थी श्रीमती निर्मला अग्रवाल, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी एल टंडन, संदीप खत्री और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय साझा कर रही थी मुंबई के संघर्ष की कहानी और भी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
3: उस महफिल में कितनी तारीफ मिली,
2: उस
3: जहां
2: महफिल में
3: फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो आर्ट से प्यार करते हैं, जिन्हें कैफे आजमी से प्यार है, जो थिएटर की दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं।
4: वो जो महफिल हुई ना, उसके बाद बाबा आजमी सर ने जो बातें बोली थी वो मेरे साथ आई, मेरे साथ थी, मेरे अंदर बात तो चलने लगी थी स्वयं से कि ये क्या, ये आदमी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है ये या फिर हमको गुमराह करने का कोई नया साजिश रच रही है दुनिया की, ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम मुंबई से मुंबई आते हैं गाने के लिए और समहाउ एक डॉक्टर बोलता है गाना नहीं गा सकती और फिर हमको लगता है अब जीवन में क्या करें, चलो एक्टिंग का ऑफर सामने से आ जाता है, एक्टिंग करने लगते हैं, फिर लगता है नहीं डायरेक्टर बनना है, डायरेक्शन पढ़ के हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जगह से डायरेक्शन पढ़ के हम निकलते हैं। एक साल दो साल अभी डायरेक्शन में काम ही कर रहे थे कि फिर से ये बोलते नहीं गाना गाना चाहिए आपको। तो मेरा लाइफ बहुत टर्मोइल में चल रहा था उस वक्त। उस महफिल उस रात जो हुआ जब जावेद अख्तर और शबाना आजमी और बड़े बड़े दिग्गज उस महफिल में बैठे थे और जब उन लोगों की नजर में अपने लिए तारीफ देखी, शब्दों में नहीं नजर में, उनके प्रेजेंस में था कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपको बोलने का भी मन नहीं करता है।
3: वो महफिल ही ऐसी होती है,
4: वो महफिल होती भी उस तरह की ही होती है। वो तो उनके पूरे हाव भाव में एक वेलकमिंग एटीट्यूड था कि बेटा तुम सही रास्ते हो अगर तुम ये करो तो, पर कोई यहाँ पे खुल के राय नहीं देता है क्योंकि जो बाबा आजमी सर ने मेरे साथ किया वो बहुत कम लोग करते हैं। इतना मानना है कि भाई जियो और जीने दो और हर कोई अपना रास्ता खुद तलाशता है आप उसको नहीं सिखा सकते हैं।
3: तो बाबा आजमी ने आपको,
4: उन्होंने तो
3: एक राह दिखाई,
4: हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही है अपने जीवन के साथ, ये उनका मानना था उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए, बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे। रियाज जब शुरू किया तो पता चला गले का जो चाम है
3: वो फ्लैट हो गया,
4: जा चुका है। वो एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, तो दो साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
3: अरे बाप रे,
4: 2014 की बात है, एफटीआई के बाद, और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई और तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो तो अब भी नहीं मानो, रुको करो, क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छोड़े हुए बचपन में छूट गया गाना ना। बट वो वही तो है कि मेरे अलावा मेरे आसपास के लोग भी बड़े कमाल के मिले हमको, मेरे अलावा सबको मेरे अंदर विश्वास था कि ये कर सकती है। और फिर बाबा आजमी जैसे मिले हमको, उनका जब सुझाव मिला, जीजा जी भी बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, शुड स्टॉप, वेट, मत जाओ दिल्ली, मत करो यूपीएससी, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम वहां जहां हो, तुम जिस चीज के लिए बनी हो तुम वहीं हो।
3: वाह।
4: और फिर हम दो साल जेन्युइनली मेहनत किए, हम रियाज किए, डिप्रेशन भी आया उस फेज में क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना कर रहे हैं क्योंकि आप दो जगह नहीं जा सकते एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
3: कैसे निराशा

0: काम नहीं किया।
1: इस बार हम टूट गए बिल्कुल, इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है, तो वो डिप्रेशन ही था। और ये इस बार ये दीपाली नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा।
0: कितना लंबा चला
1: ये चला? कुछ एक डेढ़ साल।
0: किसकी मदद मिली?
1: माँ बाप फिर से, क्योंकि अब वो स्थिति थी कि पैसे भी थे, मतलब पिछले इतने सालों में तो पैसे अच्छे से कमाए थे, तो पैसे की कमी तो नहीं थी। ये डर नहीं था कि मुंबई में जीवन यापन कैसे होगा, पर क्योंकि वो राह, वो जीवन, और फिर जीवन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको एक अलग एहसास देते हैं। और हम उसी फेज में पहुंच चुके थे जहां पे जीवन ने आपको बहुत सारे एहसास के दर्शन करा दिए थे। हमको याद है कि एक गाड़ी भी हम बुक कर दिए थे, नई गाड़ी, मेरे पास जो गाड़ी थी पिछले कई सालों से उसको हटा के नई गाड़ी भी लेने का प्लानिंग हो गया। बट एक दिन हमको याद है कि अकेले थे हम और दूध उबल के मेरे सामने गिर रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था,
0: अपने ख्यालों में
1: और मेरी आंखों से हम वो देख रहे थे, ये दूध उबल के गिर रहा है और हम गिरने दे रहे थे, और नमक था हाथ में क्योंकि चीनी समझ के डालने जा रहे थे।
0: अरे बाप रे।
1: तो वो यू नो दैट मोमेंट, उस वक्त हमको लगा कि ये तो हम है ही नहीं, इतने लॉस्ट तो हम है ही नहीं, आई एम वेरी फोकस्ड एज अ पर्सन। हम इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत फोकस्ड है, बहुत मोमेंट में रहने वाले हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब यू नो आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल वो जो ब्लैंक जीवन था ना, कि हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे क्योंकि कोई बोल रहा है कि हम अच्छा गाते हैं, और हम गाते भी अच्छा हैं, पर क्या हम ये कर पाएंगे? मेरी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? डायरेक्शन में क्या है, तो हम स्पॉट बॉय बन के भी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं। एक्टिंग हम छोड़ चुके हैं, एक्टिंग नहीं करना है क्योंकि वो एक ही चीज कराते हैं, रोज रुलाते हैं, रोज किसी से यू नो वैम्प है तो बदमाश ही है, वो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। सिंगिंग हम किए नहीं कभी, डायरेक्शन अब कर नहीं सकते क्योंकि वहां जितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो दिन और रात बराबर होते हैं वहां पे, अगर हम वो करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, पर क्या हम सच में सिंगर हैं?
0: बहुत बड़े सवाल थे।
1: हाँ, क्या सच में मेरे में ये योग्यता है कि हम एक ऑलरेडी सेट करियर जिसको हम इन्वेस्ट करके बना चुके हैं वो छोड़ के हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन चले आए क्या? क्या हम गा पाएंगे कभी? क्या सच में मेरा गला ठीक हो गया है?
0: मेरा दिमाग घूम गया।
1: हाँ। और फिर हम आई रिमेम्बर जब वो दूध वाला इंसिडेंट हुआ तो हम अपने पापा को फोन किए और हम बोले पापा कुछ गड़बड़ है। तो वो घबरा गए, क्या गड़बड़ है? हम बोले पता नहीं कुछ गड़बड़ है, हमको घर आना है। बोले आओ, कितने दिन के लिए आओगी? उनका पहला ये सवाल होता था कि आ रही है तो फिर जल्दी नहीं चली जाए। तो हम बोले पता नहीं, 6 महीना 1 साल। तो उनको लगा कुछ तो बहुत मेजर हो गया है इसके साथ,
0: ये ऐसे नहीं,
1: ये ऐसे बात नहीं करती है। और फिर हम घर पहुंचे और वो 1 साल बहुत परेशान रहे। मेरे पिताजी को ये भी था कि शादी हो जाए इसकी, उनको माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि कंपेनियनशिप होता तो शायद ये इतनी परेशान नहीं होती, एक साथ होता है तो ढाड़स बधा रहता है आपके पास। वो भी कमी होगी, आई एम श्योर वो भी कमी थी मेरी लाइफ में, बट उससे ज्यादा कमी ये थी कि हमको क्लैरिटी नहीं था कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए था। किशोर कुमार के भक्त थे हम, तो हमको किशोर कुमार बनना था। आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई कुड सिंग ऑल्सो, आई कुड राइट ऑल्सो, और किशोर कुमार का की भक्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं, कितना सारा डर होता है।
0: कैसे अपने आप को संभाला और इस 1 साल में खुद को वापस पटरी पे लाया?
1: पता नहीं वो कैसे, वो माँ बाप के पास वापस आना ही सही डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त मुंबई में अकेले रहना मेरे लिए ठीक नहीं था। तो थैंकफुली यू नो आज डिप्रेशन के ऊपर इतनी बातें होती हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और खुल के ये बातें हो रही हैं, तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकता है। यू नो हम तो
0: इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद,
1: राय, मदद, हमको ये अंदाजा नहीं था। हमको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत एहसास यू नो टूट रहे हैं हम अंदर ही अंदर, ये सब समझ ही नहीं था हमको। बस पता था कि जब भी हम हारते थे तो मेरे माँ बाप चाहिए हमको, तो बस हम, दैट वाज अ गुड डिसीजन।
0: लेकिन ये कितनी प्यारी बात है कि एक लड़की दुनिया के तमाम गमों और तमाम थपेड़ों से हार के

0: अपने माँ बाप की गोद की तरफ लौटती है।
1: हाँ, ये
0: दुनिया की सबसे प्यारी बात है,
1: सबसे प्यारी बात है। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं। मतलब आज तक हम अपने, मेरे पिताजी भी तो वही मर्द है ना जो इस समाज में जीते हैं, उसी उसी उसी समाज का हिस्सा है। पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी। कितनी बड़ी बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: वो भी तो मर्द ही है ना।
0: बिल्कुल,
1: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है। थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है। पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द, जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को। आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा। आपको यही पता है, बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है। और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को, मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद, बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, यू नो। तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते, जाओ उड़ो, बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो, यू नो। बचपन में हमारे पापा का, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर, तो हमें वो भी रोपना होता था। आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पज स्टूडियो है, जैसे ये कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था। हमें खुद का काम खुद करना है। तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे। ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे,
0: और इसलिए आप संभल गए।
1: इसलिए हम संभल गए।
0: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई?
1: बिल्कुल, पूरी तरह से,
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार।
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट 2017 में वापसी हुई मुंबई में। वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया, और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है। क्योंकि ये जो एक साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में। इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहां के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
0: वाह वाह वाह।
1: तो एफटीआई का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था। तो आई डिड इट, और एक महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहां के फोक म्यूजिक को सुने। और जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है, उसमें बिहार का नाम नहीं था। और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इस योग्य भी नहीं है। झारखंड है,
0: झारखंड था,
1: यूपी है,
0: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था?
1: मध्य प्रदेश है पर बिहार नहीं। अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता। और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं। ये बात हमको बहुत चुभी, ये बात सच है। मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है, तो बोला वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है। मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी, और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने

0: बन रहे हैं। पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन? हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम, और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो या बनी जई हो बनी के जोगिनियार हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है, या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी दादी गाती थी वो गाने, उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी। जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए।
1: ये बहुत बड़ा झटका था,
0: बहुत बड़ा झटका था। सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है, और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक YouTube चैनल है उर्दू पोएट्री,
1: मनीष गुप्ता का
0: उनके लिए एक किस्मत से एक गजल आपकी याद आती रही रात।
1: अच्छा, ओ हो हो हो हो, वो आपने किया था?
0: जी।
1: मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक है
0: जी, तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये, और क्योंकि हम जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है यूट्यूब पे वीडियो में है और आज भी हमको
1: खूब चलता है, वो
0: खूब चलता है हमको आज भी बहुत।
1: ओरिजिनली छाया जी ने गाया है
0: जी,
1: और मजेदार बात ये है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही।
0: ओ कैसा ये सर्कल है। हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है, और हमको फेसबुक पे और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
1: और मैंने क्या समझा पता है?
0: हाँ।
1: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने वो वीडियो बहुत देखा है।
0: अच्छा।
1: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ कविताएं।
0: अच्छा।
1: पढ़ी हैं।
0: ओ, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था, ना हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया है
1: दो कैमराज
0: लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माई ओन लैंग्वेज। भोजपुरी में अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में, तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा। उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन। उनको चाहिए थे लोकगीत,
1: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे, ऐलान किया था,
0: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन,
1: वो भी हमारे दोस्त।
0: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं, और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है, तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट, तो लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा।

0: वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा, और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
1: क्या बात है, और वो खूब चला,
0: खूब चला
1: और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
0: बहुत चला।
1: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
0: पार्किंग लॉट
1: वो भी मजेदार है, उसमें तो अपने पता नहीं क्या क्या गाया है।
0: हाँ उसमें तो
1: जब जो मर्जी आई गाया है,
0: जब जो दिल में आया। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
1: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
0: ये दोनों पैरेलली शुरू हुआ
1: और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये
0: हाँ, ये
1: मतलब ये बहुत मजेदार है। मुझे ये
0: हाँ,
1: आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूँ।
0: ये कमाल है। 2017 पार्किंग लॉट सीरीज शुरू,
1: वो भी बहुत चली थी,
0: बहुत चला,
1: बहुत ज्यादा।
0: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था, तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, AR रहमान सुन ले हमको बस, और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी।
1: और उन्होंने सुन ली,
0: उन्होंने
1: क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना?
0: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको।
1: अच्छा,
0: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
1: उनका भी
0: जन्मदिन है,
1: ये भी इत्तेफाक है।
0: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
1: अरे बाप रे
0: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे AR रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, AR रहमान स्टार्ट्स फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि AR रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे, एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने
1: सारे सुने होंगे।
0: और यू नो AR रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमको समझ आया कि ये जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माई इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है। अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
1: ये एक जरिया बना।
0: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और AR रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है। किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे हैं। और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा।
1: लेकिन ये 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के,
0: हाँ
1: कंफ्यूजन के साल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए, आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके। अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी, लेकिन अगर

0: की वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था, और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है। और दिल के अंदर दम कोने में एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना यार रहमान के पास प्लीज।
1: वाह वाह वाह।
0: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे, और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहां ढूंढते हैं।
1: उन्होंने कहा था
0: इंस्टाग्राम।
1: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था ये।
0: तो ये 3 साल पहले की बात है। मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही, पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था कि पहुंचेगा।
1: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था।
0: ओहो कैसे बताया। हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहां रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी, और वहां पर हमको बुलाया गया था
1: चेन्नई में एआर रहमान स्टूडियोज।
0: एआर रहमान जी का जो स्टूडियो है पंचतन नाम है उसका, वो उनका घर है, होम स्टूडियो है उनका
1: बिल्कुल।
0: और जब हम पहुंचे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में एआर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला ले तो तुमको क्या लगता है तुमको क्या चाहिए। तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए। तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और एआर रहमान का एक गाना हो सोलो।
1: एग्जैक्टली ये बोला।
0: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: जेवा पे सरस्वती बिराजती हैं भाई, बिराजती।
1: क्या बात है क्या बात है। और ये संभव हुआ।
0: ऐश्वर्य ने बोला भी कि ए आर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में डिडोरा पीटता है कि अब तुम सबको बता दो कि तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उन लोगों की नजर में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर ए आर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे, आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा ए आर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
1: अरे गजब।
0: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था।
1: एग्जैक्ट छह महीने। वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
0: जादुई है सर, इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
1: दीपाली ये एक ऐसा गाना है, मैं वापस आऊंगा का गाना, कि आज इस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गई, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुनकर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां हम आपसे वो गाना लाइव सुने।
0: जी जरूर।

0: जब आप ये सारे गाने की बातें गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं, ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं
1: है,
0: ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे। क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीजों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट है हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर, प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में, वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
0: बहुत बड़ी।
1: पर मेरे

0: अंदर खुद को ही लेके
1: संशय था,
0: हाँ, कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था, ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है, ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है,

0: ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है। और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
1: वाह वाह।
0: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूँ। ये जो बातें थी ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा। ये सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की, इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए के पास,
1: बिल्कुल,
0: और इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
1: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
0: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
1: कंप्लीट एल्बम,
0: कंप्लीट एल्बम है। यस।
1: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
0: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना।
1: अच्छा।
0: जिसने गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका।
1: बिल्कुल।
0: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट।
1: उसको ये मौका दिया गया,
0: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है रहमान सर,
1: हमको तो आपकी आवाज में सुनना है।

0: क्रिसमस करा अखियां लगाई रखना क्रिसमस यारा लाइमस करा लकियां निभाए रखना।
1: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थी तब रहमान नहीं थे,
2: नहीं थे जी,
1: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
2: जी,
1: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
2: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं, शायद इसी वजह से हमको दस साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था, तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
1: क्या बात,
2: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
1: बिल्कुल,
2: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला सपने में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, और हम लोग चलना शुरू किए। और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और उसके बाद हम लोग अंदर गए, और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं, और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है,
1: उनके लिए एक समाधि जैसा है,
2: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद।
1: वाह वाह।
2: और उसके अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम एआर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम।

0: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने।
1: क्या बात है, क्या गाया?
0: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है।

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक लगा। ये मेरा स्टाइल है वैसे, किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मे भी इसलिए शायद, वेरी गुड एक्चुअली, गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है मछली के, यू नो, कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है। और ये जो अंतरे है ना इन गानों के, असली रूह इनमें है, तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था, और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास। उस समय 500 व्यूज से 5000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही सारे एहसास है, मुखड़ा तो रिपीट होता है।
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस है, क्या बात है,
1: वो लोग अटकते हैं इसमें।
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
1: जी,
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
0: वाह,
1: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहां तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
0: क्या बात है,
1: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं।
0: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की हमने ऐश्वर्या की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए।
1: ऐश्वर्या से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्या ने एक रियलिटी शो जीता था, वो बिहार से पहले थे। और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्या भी खड़े थे।
0: अच्छा?
1: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्या को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्या का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली है। बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो, आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था। तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है। पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
0: मतलब बरसों बाद
1: 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्या को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्य से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्य जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं। जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे, मेरे दिमाग में गलत सोच है ये।

0: ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: रफी भक्त हैं।
1: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त एक किशोर भक्त।
0: हाँ, ये
1: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
0: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है घर, ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात ये है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
0: बहुत,
1: है ना, बहुत। अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
0: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है। हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्य एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार हैं, और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहां एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
1: वाह वाह वाह,
0: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
1: वाह,
0: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है, क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले पापा मम्मी पापा माँ पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं। पर ऐश्वर्य से मिलके समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है,
1: बिल्कुल,
0: और पूर्णता से है,
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम, वो जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने। तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
1: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ गया।
1: ये पार्किंग लॉट सीरीज में था,
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर डी बर्मन
1: जी।
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो सुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: दीपाली, बहुत प्यारी बातें आपके साथ हुई और कुछ बातचीत ऐसी होती है कि ये लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो खत्म ना हो लेकिन कहीं तो खत्म करना पड़ेगा
1: जी।
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी।
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किया। इम्तियाज सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज हम जरूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं, चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों ना खड़े हो। वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया।
1: अमेजिंग,
0: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉक।
1: समय वर्तमान अपराह्न 5:00। आपण मानको स्वागत जणै आरंभ करूछु आजर सांध्य अधिवेशन। कार्यक्रम आम केन्द्रु प्रसारित होउछि मीडियम वेव्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जगे एफएम्रे 103.6 मेगाहर्ट्ज एवं न्यूज अन एआईआर एप माध्यमरे मध्य आम केन्द्रर समस्त कार्यक्रम शुणिपारुछन्ते। अधिवेशन आरंभरे प्रचार करुछु जुबवाणी प्रयोजना मनोज कुमार पुजारी उपस्थापना साई स्वस्तिक पाढ़ी एवं स्मृति प्रज्ञा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल

0: किया गया है?
1: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो रही तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते कहा कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधिक या पूरी तरह अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी दीपेंद्र।
0: जी धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रचार करुछो श्रोतांकर मतामत अभियोगकु नै मेसेजर उत्तर कार्यक्रम संपर्क सेतु उपस्थापना करिछन्दि रंजन कुमार बेहरा और धरित्री सतपथी, प्रयोजना मनोज कुमार पुजारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: ପିଲାଟା ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା ହେଇ ଏତେ ସରିହେଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ORS ଦେଇନ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ତା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ ଏବଂ ଦେହ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଏ। ପିଲାଟା ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଏ, ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଧୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁକୁ ORS ମିଶା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଏଥିସହିତ ଜିଙ୍କ୍ ବଟିକା ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ।

0: प्रदान करुवा लोक भारतीय समरिटर्न सुरक्षा निर्देशावली मध्यम सुरक्षा प्रदान करा फौजदारी दायित्व निवृत्त रखी दैनन्दिन जीवन में प्राथमिक चिकित्सा आधारित ज्ञान बहु प्रासंगिकता रही संपर्क में आम समस्त जाणी उचित एथिपाई व्यक्तिगत स्तर में प्रयास आवश्यकता रही आवश्यक स्थल आम परिपार्श्वे घटुवा घटन प्राथमिक चिकित्सा प्रदान मध्यम अमूल्य जीवन बचाईबार सफल हो पार
1: आजिर प्रसंगे शुणिले जीवन रक्षा क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा आलेख्य आंचलिक संवाद विभाग उपस्थापन सुभाष चंद्र शतपथी
2: कार्यक्रम रिले कलो आकाशवाणी कटक केन्द्र आकाशवाणी जयपुर प्रचार करतेड़िया चलचित्र गीत प्रथम चलचित्र स्माइल प्लीज शिल्पी कुमार बापी गीत रचना डॉक्टर निर्मल नायक संगीत निर्देशना अभिजित मजुमदार।

0: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର 10 ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଆଇଏର ଖାନତଲାସୀ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ତିନିଟିକିଆ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳାଯିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।
1: आकाशवाणी कटक
2: सुदूरु सदर अपहंच अंचल स्वर उत्सव महोत्सव सभा समिति समारोह प्रगति दुर्गति एवं संगतिर अभिव्यक्ति को नहीं आंचलिक संवाद विभाग पक्ष प्रस्तुत करुछु जिला हालचाल। आज जिला हालचाल शुणु पुरी जिला संपर्क में तथ्य देखते पुरी संवाददाता सौमित्र रंजन हरिचंदन उपस्थापन मो सुभाष चंद्र शतपथी। श्रीमंदिर रत्नभंडार गणति मणति कार्य गत अगस्ट 31 और सेप्टेम्बर 1 तारीख दुई दिन राज्य सरकार निर्धारित मार्गदर्शिका अनुसार कर तेज 17 दिन हे गणति प्रक्रिया होता बेले चलती बाहर रत्नभंडार समस्त अलंकार गणति मणति कार्य शेष हो भीतर रत्नभंडार गणति प्रक्रिया जारी रही बेले 93 घंटा 51 मिनिट्र गणति सरी भीतर रत्नभंडार काठबाक्स किछि मूल्यवान सामग्री तथा अलंकार रही बेले से ही काठबाक्स गुड़िकर माप निया आगामी दिन में काठबाक्स सामग्री गणति मणति कार्य कर 1978 मसीहा तालिका अनुजाई ए जावत मेलक सठिक रही श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी कहते
3: एवं जहां भी रत्न अलंकार गुड़िक गणति सामिल करेक रत्न खचित होनेक समय सापेक्ष होतर रत्न भंडार गणति प्रक्रिया सरी ना एवं आहुरी केते दिन लगे आम भी जानिना कारण पूर्णांग भाव में जहां भी राज्य सरकार अनुमोदित एसओपी अच्छी से हिसाब से समस्त प्राधिकृत अधिकारी एवं व्यक्ति विशेष उपस्थित ही ये कार्यक्रम करा काठ सिंधुक कास्केट रो जो माप नहीं मूल्यवान सामग्री अलंकार एपर्यंत गणति प्रक्रिया आरंभ होना कारण एवं जहां भी स्टोरवेल अच्छी जितेबले अस्थायी रत्न भंडार आम स्टोरवेल गुड़िक अलंकार आदि तहार जो प्रक्रिया आरंभ कर अनेक रत्न खचित मूल्यवान रत्न अलंकार रही गणति कला बेलू बहुत समय लगुच तेणु आम आगामी दिन में जितेबले भी तार सुविधा हम से हिसाब से कास्केट रे थिबा मूल्यवान सामग्री को आम गणति प्रक्रिया रे सामिल करिवो।
2: जातीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य दुईदिनिया पुरी गस्तरे आसी विभिन्न कार्यर समीक्षा करथिले। अध्यक्ष श्री आर्य सर्किट हाउस ठारे पहुंचिया पारे सम्मेलनी कक्ष रे आयोजित बैठक रे पुरी जिलारे अनुसूचित जनजाति विकास कल्याण तथा उन्नयन पई ग्रहण करा जायथा विभिन्न पदक्षेप संपर्क रे समीक्षा करथिले।
4: हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब से हम कमीशन में 13 मार्च 2004 से मैं इस कमीशन में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ में सभी अधिकारी साथ में मौजूद हैं। हम उड़ीसा के दौरे पे हैं और इस समय में यहाँ पूरी जिले के अंदर मैं बैठा हूँ। यह जन समस्या सुनने के पूर्व हमने सर्किट हाउस के अंदर जिले के अधिकारी कलेक्टर की अध्यक्षता में हमने यहाँ पर बैठक रखी। माननीय प्रधानमंत्री के जो निर्देश है कि देश के अंदर पेशा एक्ट की क्या स्थिति है, ट्राइबल के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजना किस स्टेट में चलाई जा रही है, इन आदि विषयों से कलेक्टर और जिले के संबंधित अधिकारी यहाँ पर आयोग को सब रिपोर्टें पेश की है। इसके बाद में हम जनसंवाद करते हैं। जनसंवाद में यहाँ पर काफी संख्या में लोग पुरुष महिलाएं या आई राइटिंग में भी हमको लेटर दिए हैं, मौखिक में भी चर्चा की है।
2: एबे किछि संवाद संक्षेप रे आम संवाददाताक ठारो
5: पुरी गोपबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्नातक समारोह अनुष्ठित होता बेले एथिरे राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कामपाटी योगदान करी 42 जन स्नातक छात्र छात्री मानकु स्नातक प्रमाण पत्र प्रदान करथिले। पुरी जिला रघुराजपुर ऐतिह्य ग्राम विकास नहीं राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र प्रकल्प को उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री प्रभाती पड़ा मुख्य अतिथि भाव योगदान कर शिलान्यास करते प्राय 23.82 कोटी टंका व्यय बरद में रघुराजपुर ग्राम से नूतन भाव रूपांतरण कार्य कर लक्ष्य रखा ऐतिह्य ग्राम को आसुवा पर्यटक मान स्वतंत्र सुविधा प्रकल्प मध्यम कार्य कर पुरी श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बोली स्वास्थ्यमंत्री मुकेश महाली समीक्षा करता बेले खूब शीघ्र मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम होने मत व्यक्त करिछन्ति।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई

0: कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: ना नवघन भाई देखा ना मागुणी देखा संज बुड़ा तमें सिना बैठकी घर को आसब आम टे चाषवास विषय कथा हबा आउ दिने दिदिन रहा गणेश पूजा सब तो सही माति थे
3: जुआर जुआर
2: किए आम मागुणी की
3: ये चिन्ही कौन पारुच
2: नाई बा मु जानी तमें से आम जो बाउश बंधा बंदी चली
3: कथा कौन जान अपा
2: कौन
3: आसुली बा ये तलसाई छक मुंड गोटे दुर्घटना है घटना कौन सेपट गोटे बैक बाला आसुला आपट गोटे बैक बाला जाऊला ये हर्न बोधे कार खराब हेजी कौन दिज तो सामना सामने बाडाबाडी गले
2: गाड़ी कौन चलेला भाया चलाउ
3: आउ तापर हेलमेट ना
2: देखुन यही तो भूल करछि अरे आग सिना आमर जीवन सब बेले आमे लोक मानंकु सचेतन करूछु गाड़ी धीरे चलांतु मोबाइल व्यवहार करंतु नाही
3: आउ हेलमेट सब बेले पिंधिके गाड़ी टी चलांतु
2: हां मागुनी कोन हेला बा कहू
3: ये घटना कोन हला दि जण को मुंडर हेलमेट नै
2: हां
3: आउ मुहा मुही माटटी हिछि आउ दि जण जाको छिटकी पडिछन्ती आउ सेठी चारि पाँचटा टका होरिया श्याम आउ मु तीन जण तो दौड़ी गेलु फट कि ना आउ दि जण को सेठु तळे पडिथिले उठिलु उठे कि बसेलु आउ रक्त तो धार धार जण को नाक दंडी फाटी जाइछि आउ जण को मुंड फाटी जाइछि
2: आउ जण टिके पानी फाणी छिछि
3: दि जनकर जनकर सेंस नथिला
2: हां
3: ताकु टिए पानी फाणी छिंची देलु सेंस आसिला आउ जनकर तो नाक दंडी फाटी रक्त तो प्रबल साबो होउची
2: हां
3: रुमालटा तुरंत तांको नाकरे दे देली आउ पाटी बाटे से निश्वास नेले
2: जाउ टिके तु चिकित्सा करि देइजो
3: आ ये सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा हला जदि दुर्घटनाटा घटिला
2: हां
3: प्राथमिक चिकित्सा जदि न होबो
2: हां
3: ताहाले रोगी तो आउरि गुरुत्व रहि जीवो
2: नाही नाही आगो आमे प्राथमिक चिकित्सा करिबा जदि आमा हात पांदरे सेटा भलो हि जीवो ताले असुविधा कोन
3: हां तापर कोन ला जानजो 108 एम्बुलेंस को डाकिलु आम्बुलांस रे दि जण को नै डाक्टर खाना रे उपयुक्त चिकित्सा देलु
2: भलो कामटिए कल मागुणी ईश्वर तुमको आशीर्वाद करंतु कल्याण करंतु एमिती आमे जदि तत्क्षणा चिकित्सा टिके जोगै दबा आ टिके जीवन फेरी पाइबो सुस्थ रहिबे अरे हे ए कथार गुटे कथा मन पडिला बा
3: ओ कथा बा
2: अरे आजी माने सेप्टेम्बर मासर द्वितीय शनिवार को आमे को दिवस रूपे पालन करूचे कहिलो
3: विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस
2: जीवन बचाइबारे प्राथमिक चिकित्सार महत्व आउ सचेतनता सृष्टि करबा पई आमे आजिर दिन को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस रूपे पालन करूछे
3: ठीक हेई पई आज गुटे बढ़िया कथाटे गुटे मने पड़ला कहिबी एको मुहूर्त एको साहाज्य बदलाई दिए जीवन रो गति।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई

0: ଶୁଣିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 8:45 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ପରେ ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 8:09 ଏବଂ ରାତି 9:15 ଶୁଣିବେ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: वाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की

0: इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document.
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को

0: दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालेंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वर्षा विलियम्स विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds a series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova and in U.S.

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, इस रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है।

0: समाज, उसकी स्मृतियाँ, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियाँ संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश। तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पद यात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाएं। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्राय अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था, अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा, हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनिया, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा, लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए।

0: वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूर्णों का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया। उसी निष्ठा से, जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था, ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गई। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी मां से होता है। मां के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम मां कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी मां कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल बढ़ रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
1: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी सालजोंग का।
2: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
3: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है। हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
2: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसी शालजो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
3: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
2: इस जीवंत परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
3: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है, इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
4: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। तो ये हमारा

हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था. जो ट्राइब है मेघालय की, उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिशी साल्जो, जो कि सन के गॉड है. तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वनगला डांस परफॉर्म करते हैं. 100 ड्रम्स वनगला, ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वनगला परफॉर्म करते हैं. हमारा जो ड्रम्स होता है, हम खुद हम ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं. जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम्स जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे. तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है.

0: पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
1: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
0: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
1: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
2: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथापसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचू। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सिंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियां पहनते हैं उसको हम चकसन बोलते हैं। हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं।
1: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
3: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गामचा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंडरा कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम दोमे भी पहनते हैं। दोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
0: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है, और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
1: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है, अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
0: और मैं नेत्रा।
4: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का। गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व, और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरे।

0: लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी।

0: श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है, हम गुलाल नहीं यूज करते, और तीसरी बात यानी हमारे जो समय म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाते हैं।

0: सकती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
1: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
2: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
1: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
2: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
1: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
2: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
3: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायुमय पुस्तकालयों और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
4: कम्युनिटी हॉल्स, वायुमय लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज़ वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
2: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ

0: جن.
1: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश. विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं. और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है. इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है. और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस. हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया. 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए हर जगह हर दिन. और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया. महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया. इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक. नवोदिता को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित A.R. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पिहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

आकाशवाणी जयपुर समय वर्तमान राति 11 हवाकु जाउची सुनंतु प्रथमे हिंदी रे संवाद परे परे इंग्रजी रे रिले करी प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता

0: की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS summit kicked off this afternoon with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action.
2: ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times. After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat.